जसोलपाथा नेपाल सम्बन्ध चिन्छसौ पी खुद दिल्ला थुपारु थो रेडियो नेपालका अन्य नादिसँग जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार सरकार मिटर ब्याज पीडित या हाठ्या नङ्केगु नितिन हपाङ्गु खुसी निसङ्गु आयोग वो समितिया प्रतिवेदन तथ्या नीति छेलाबुला याइगु जुगुदु मन्त्री परिषद या मेघ या बैठक मिटर ब्याज संस्थि फया छोपी पीडित एगु समस्या नहङ्केगु नीति निसङ्गु आयोग या प्रतिवेदन तथ्य या नीति छेलाबुला याङ्के त गृह मन्त्रालय या त फाला लल ह्यागुको छिनागु सरकार या प्रवक्ता नपाङ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई जानकारी ब्यादिल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद या कार्यालय सन्दर्भारे चङ्गु बैठक विपद प्रति कार्यसँग खटे जेपी सशस्त्र प्रहरी या कर्मचारी ते त प्रोत्साहन भत्ता लल ह्यागुन कोछिगुदु हाठिया इले मनुते सञ्जीव धन्या रक्षा नीति कार्यक्षेत्रकै खटे जेपी सशस्त्र प्रहरी बल या कर्मचारी ते गु मनोबल थकायता व शास्ति जागु थासे खोज व उद्धारे खटे जेपी सशस्त्र प्रहरी या कर्मचारी ते त प्रोत्साहन भत्ता लल ह्यागु कोचिनागु मन्त्री पोखरेललाई जानकारी ब्यादिगु खसा अथेना अन्तर्राष्ट्रिय झ्यान्ते बल्ला तेगे नेपाल यथा सम्पत्ति काइगु काइपीसँग कागु पदक कापी मनु कासामी प्रशिक्षक सहायक प्रशिक्षक फिजियो व व्यवस्थापक तेता ठेबा व हनापौ लल ह्यागु नेपाल वायु सेवा निगम या सञ्चालक समिति कार्यकारी अध्यक्ष महाप्रबन्धक या नापा ज्याखे लाइगु याना महेश्वर भक्त या त ज्या भाला नापा लल ह्यागु याना महेश्वर भक्त श्रेष्ठ या त भाला लल ह्यागु थिथि पुसा या नापाङ्गु संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृति आएको नापाङ या कोचिना त जुगु सरकार या प्रवक्ता नापाङ शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई जानकारी ब्यादिल गृहमन्त्री सुदन गुरुङ वा मिटर ब्याज पीडित दति बारा निजगढे मेघ नापाङको खुसी वार्ता पोङ्गुदु सरकार यथा स मिटर ब्याज पीडित नापा वार्ता याता थेङ्का दिमा मन्त्री गुरुङ पीडित तेस तगु खुगु धलया माग या विशेष नापाङको खुसी वार्ता जुगु ख आजुगु निकगु धलया वार्ता नीति सरकार वा आन्दोलन याना चोपी पक्ष दति छेज्या जुया सोङ्गुदु प्रतिनिधि सभासँग सांसद तेसा विपद जोखिम न्यूनीकरण वा नियन्त्रण ध्यान बित व जनता जीव धन्या रक्षा या त सरकार नापा माग त अगुदु सांसद तेसा मजिको वो गुवाया हुने कालीकोट जाजरकोट कैलाली नापा या जिल्ला खुसी बास लिचो लागु पीडित पक्ष त्यता राहत या त माग या नदिगुदु छ म यहाँ लिउ सभामुख डोल प्रसाद अर्यालम विपजन्य झाँका हुने जुई फैको मानवीय नापा भौतिक क्षति न्यूनीकरण या नीति लिचोलाईको कथम पूर्व तयारी या व्यवस्था या त सरकार या ध्यानको सल्लाह दिगुदु थोयजोले सभामुख अर्याना मडिको वोगु वा खुसीबा चल व डुबिना या घात झाँका त उपया चङ्गु धासे विपद जागु झाँका ते त झाँका ते के लापिनीगु राहत व उद्धार या व्यवस्थापन या त व अपुगु कथम सुरक्षित सवारी वे वनिगु व्यवस्था मिले या त सरकार या ध्यान कोसाला दिगु दुस सांसद तेसँग विस्थापित सुकुम्बासी तेगु तया तगु टुकिता आनन्दको नेना दिशा सांसद तेसा विस्थापित सुकुम्बासी त तया तगु किपुया होर्डिङ सेन्टरे खुसीबाद वहाँ वङ्गु उदारे खटे जुपी मनु त दत्ती दुर्व्यवहार नापान जुगु किर्तिपुरिया होल्डिङ सेन्टर चना चोपी सुकुम्बासी व्यवस्थापन या त माग्यागु दुसा सांसद तेसा ठिके जुगु हाठ्या श्रमिक वर्ग खे लागु लि महँगी कालोबजारी बिचौलिया तन्त्र नियन्त्रण याना जनता त्यता राहत बिता प्रधान सुझाव बिसे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधि सभा या संसदे बोती कया संसदे सँग लुङ्गु न्यास्या लिस बितान माग्याना दिगुदु थोयजोले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मेघया प्रतिनिधि सभा बैठके बोटी कया दिगुख संसदे सँग भदौ 23 र 24 झाँका विशेष मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक याता माग्याना दिगुदु थोयजोले बैठके प्रतिपछि दल या संसदे सँगै राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा याइगु भाला सरकार या जुसाना प्रधानमन्त्री सहाय नेपाल भारत या सिमाना नेपाल कोटिला टगु ढैगु महामधुगु नोचु बिगुलिन ठो नोचु लिता कया संसद रेकर्डसँग चिकेता माग तया दिगुदु प्रतिनिधि सभा मिगा बैठक अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले अर्थ नापाया छु नेपाल कानुन या त संशोधन या त खारेज आएको विधेयक 2083 न्यवया दिगुदु कानुनी दोहोरोपना हङ्केता हो म इले लागते प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रभाव सुनिश्चित यागु आज विधेयक भिङ्के मागुन अर्थमन्त्री वागले त्वाथिका दिगु दुसा
बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय थासाङ, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम, न्यवयादिगु नेपाल विशेष सेवा एन 2042, साविक व्यवस्था भिङ्केगु नापाया विधेयक 2083, राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक 2083, यता सभान्त फवार सल्या नीति, स्वाफुदुगु समिति छोगु दुसा अध्ययना, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय थासा, कानून मन्त्री सोभिता गौतम, न्याय परिषद अध्यक्ष प्रतिवेदन 2081-82, न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रतिवेदन 81-82, वो लोकसेवा आयोगका खुई खुकगु दक्ष प्रतिवेदन सभा सन्दु तबियादिल प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक थौ सुते छिन्छताइले चोनिगु गोसादु। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बजेट नापाया सङ्घ विधेयक प्रमाणीकरण याना दिगुदु। राष्ट्रपति पौडेल थौ राष्ट्रपति पौडेल मिग संघीय संसदसँग पारित जुग आर्थिक द 2083-84 बजेट नापा स्वपुदुगु सोङ्गु विधेयक प्रमाणीकरण याना दिगु ख। राष्ट्रपति पौडेल नेपालीय संविधान कथा विनियोजन विधेयक 2083, राष्ट्र ऋण भनेको विधेयक 2083 वा आर्थिक विधेयक 2083 प्रमाणी याना दिगु। राष्ट्रपति कार्यालय मिग पिथङको विज्ञप्ति सनेथना तगुदु विधेयक प्रमाणीकरण जुइमा सरकार यथा आर्थिक द 2083-84 नीति विनियोजित बजेट छेलाबुला यङ्किगु संवैधानिक व कानुनी ल चागुदु। थिथि विश्वविद्यालय नोपी उपकुलपति त्यसमा प्राज्ञिक लगायत दलीय राजनीति मुक्त देखिगु सुशासन छेलिगु नेससँग मङ्का प्रतिबद्धता पङ्कगुदु। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साय बोतीसँग हिग प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदीय कार्यालय सिंहदरबारे नेपाल या उच्च शिक्षा लगायत वर्तमान हाठ्या व भिङ्केको विषयसँग खलावला जुगु सहल ज्याझोले वेकला थोक अथया मङ्का प्रतिबद्धता पङ्का दिगु ख। विश्वविद्यालय सहकुलपति नापा जुया चुना दिमा शिक्षा मन्त्री पोखरेल विश्वविद्यालय मुख्य प्राज्ञिक लकस व्यवस्थापकीय सुधार या नीति मन्त्रालय मागु सहजीकरण यागु वचन नापा पङ्का दिगुदु। शिक्षा मन्त्री पोखरेल जुथा सस्मित पोखरेल धका फिङ्का। उच्च अदालत पाटन याङ्गु पासपोर्ट दुरुपयोग व कृतेक भो नापाया मुद्दा तत्कालीन संविधान सभा या सोमा दुजयाता दोषी ठहर जुइगु जिल्ला अदालत यहाँ या कोसिनायाता सदर यागुदु। न्यायाधीश पी खड्क बहादुर केसी, गोपाल प्रसाद वास्तवले मङ्का जालसँग थोए असार 23 गते संविधान सभा सदस्य पी गायत्री शाह, विश्वनाथ प्रसाद यादव, शिव पूजन राय यादव यता दोषी ठहर जुइगु जिल्ला या कोसिना सदर यागु ख। नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सुकुम्बासी हाठ्या नङ्केगु नीति मङ्का डिस्ट्रिक्ट को छिने त सार्वजनिक महत्व या प्रस्ताव संसदीय न्योजाके त संसदीय दल या त इनापियागु को छिगुदु। पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा या नयाँ सुईसन थोए असार 25 व 26 गते या बैठक सुकुम्बासी हाट्या नङ्के त मङ्का राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट देके मागु तागु दुसा व नापाया को छिना मिग सार्वजनिक यागु ख। उपसभापति शर्मा केन्द्रीय नीति अनुसन्धान व प्रशिक्षण प्रतिष्ठान या प्रमुख नापा ख। विपद्या इले मनुतक पूर्व सूचना याक्न वैसेनलाईगु कथन ठेङ्केगु आज सूचना तथा संचार मन्त्रालय थिति स्वपुतैगु निकाय नापा विपद आपतकालीन पूर्व सूचना तथा नापाङ्गु चेतावनी प्रणाली या प्रभावकारिता विशेषण सहल व्याकगुदु। मन्त्रालय मिग गोसा गुगु सहलसँग विपद या पूर्व सूचना प्रणाली या त अञ्चली चोलाकीगु सेल ब्रोडकास्ट थेजागु आधुनिक प्रविधि या छेलाबुला नुगु प्रविधि बजेट जनशक्ति कानुनी व्यवस्था व संस्थाको समन्वय विशेषण आपना खलाबुला यागु ख। विपत्ति लापी मनु त्यता मालेता व उधार यागु नीति छेलिगु याना निजी लागा या हेलिकप्टर ड्रोन व राफ्टिङ ल लागेको जुगुदु। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व व्यवस्थापन प्राधिकरण व वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल, नेपाल ड्रोन सङ्घ व नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सी नारा दथी समझदारी पौसन लाची तगु ख। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल नापाए समझदारी कथा ये स्वनिग दुने उडान जाके मासा ढेपामाको ल लागु व स्वनिग पिने उडान जाके मासा मो ढेपाके न्याकिगु कथा समझदारी पौसन लाची तगु ख। सर्वोच्च अदालत निजी संचार माध्यम या त सरकारी विज्ञापन मबिगु सरकार या परिपत्र खारेज जुइगु ठहर यागुदु। सर्वोच्च अदालत या न्यायाधीश पी सारङ्गा सुवेदी व निर्पदोष निरौला या मङ्का जालसन 2082 चैत्र 18 गते सरकार या निजी
मिडिया या त सरकारी विज्ञापन मबीको कोसिना विरुद्ध लागू रिट निवेदन खारेज जुइगु फैसला न्याङ्कु सेन सरकार पिथङ्गु उगु परिपत्र खारेज जुइगु ठहरियागु ख दियाङका आ अथे नेगु प्रतिशत वापि ज्या सिनाज्या कोचागुदु कृषि विभाग या कथा थुगुसी झिन सोङ्गु लाख नेगु नेदो हेक्टरे वापि ज्या पोङकेगु आज दुसा न आतको खुगुलाख चे निगु दो हेक्टरे सिनाज्याको चागुदु विभाग उपनिर्देशक राजेन्द्र कोइराला वङ्गु दे थोहे इ तक खुइगु प्रतिशत सिनाज्या जुसान थुगुसी नेगु प्रतिशत जको सिनाज्या पुङ्गु जानकारी ब्यादिल नेपाल आयल निगम थौनी से साबिक्या हे झिम पेङ्गु फुटी निगु किलोग्राम ग्यास सिलिन्डर बजारे छुएता उजाभिगुदु इन्डियन आयल या थिति बोटलिङ प्लान्ट वो रिफाइनरी त पाखे एलपी ग्यास तेगु लोलिङ या अवस्था भिङ्कागु धासे निगम थौनी से सिलिन्डर झिम पेङ्गु फुटी निगु किलो ग्यास ज्याकेता उद्योगी टेता उजाउँ बियागु प्रवक्ता मनोज ठाकुर जानकारी ब्यादिल गण्डकी प्रदेश झिन छगु जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितता व जिगोपना जुगु जिल्ला या कथन तर्चुगुदु लिपाङ्गु इले थोए असार 25 गते नवलपुर यता पूर्ण खोप सुनिश्चितता व जिगोपना जिल्ला जुगु कथन घोषणा जुगु प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्र त्यसन थागुदु आवनी से मनु त्यसा ए पाखे देन्याङ्क लल हाइगु हिया धलस्वे फैगु जुगुदु नागरिक एपे रक्त सूचना पोर्टल तनि व प्रयोगकर्ता पिन्स थिथि रक्त सञ्चार केन्द्र छु समूह या हि छु गुली युनिटे लल हाना चङ्गु दुधैगु विशेष जानकारी क्याफैगु जुगु ख यहाँ या थिति थासँग अनलाइन जुवा सट्टाबाजी मितिकी गु व सामाजिक सञ्जाल पाखे थुकिया प्रचार प्रसार याइगु ज्याखे बोती कागु दोपासँग प्रहरी पेमासित जोङ्गु दु जोपीले निगु करोसिबे उप अनलाइन सट्टेबाजी कारोबार यागु दोपन लागुदु जिल्ला प्रहरी परिसर यहाँ प्रवक्ता नापाम प्रहरी उपरीक्षक पवन कुमार भट्टराई कथन जोपीले रूपन्देहिया प्रत्युष्मान सिंह बाराया गौतम कुमार गुप्ता पाँच थरिया सवर्णम बानिया व पाल्पाया सुधन सुवेदी पनि लागुदु जोपी निगु पाखे पेङ्गुथान मोबाइल फोन पेङ्गु सिम कार्ड बरामतियानागु प्रहरी धागुदु छ अमिसँग मोबाइल ब्याङ्किङ व बेटिङ प्लेटफर्म पाखे निगु करोडसिप उपकारबार यागु खने दुगु न सुच बियादिगुदु नेपाल पर्यटन बोर्डिया सञ्चालक समितिसँग खुल्ला ढेन्डेबल्लासँग हिग यामासित नियुक्त यागुदु नियुक्त जिपी दुजासङ खुम्बहादुर सुवेदी सन्तोष पोखरेल सृजना केसी पेम्बा शेर्पा डाक्टर सुविधा श्रेष्ठ ढकालमी लागुदु पर्यटन एन प्रचलित कानुन व्यवस्था कथन निसोङ्गु बोर्ड सदस्य लिएगुली समिति खुल्ला आवेदनसँग कागु निवेदन या धल कथन वेक पिन्ता नियुक्त यागु ख आदेशमा पिनया जानकारी पाकिस्तान उत्तर पश्चिम खैबर पख्तुन वा प्रान्त या कोहाट जिल्ला आपलम वा वगु हुने आवासीय छे दुनावले मोतिन गुमा मनु सिगु नापा चिम्पेमा कापा जुगुदु उदार याना चौपी अधिकारी तेगु कथा आपलम वा वगु हुने जिल्ला या लाची लागा मागा माला गिन लागा खुसीबार धुवाउना नि सोमा स्यागु छे दुना वगु ख आकाशय जानकारी फ्रान्स यता बुकु से स्पेन फिफा विश्वकप 2026 या फाइनल थाहा वङ्गुदु अमेरिका या टेक्सास डलास स्टेडियम जोगु नापाङ्गु सेमी फाइनल कासा स्पेन फ्रान्स यता 2-0 गोल बुकु से फाइनल थाहा वङ्गु ख फाइनल थाहा वनेगु नीति थौ अर्जेन्टिना व इङ्ल्यान्ड दथि मितिगु गोसादु आ मौसमीय जानकारी थौँ कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश हिमाली लगाया छुन्थासे व लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमाली लगाया मोहथासे मलनापान लाप्चा तोया वावैगु सम्भावना कुबीगु जुगुदुसा भतिचा चपौँ कोहाँ वैगु सम्भावना नन्दु देया पहाडी ओतराई लगाया छुन्थासे मलनापान लाप्चा तोया भतिचा तस्खौँ वावैगु सम्भावना दुसा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश पहाडी लागा व मध्य प्रदेश तथा बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या तराई या लागा छगुनीगु थासे आप्ला वावैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु नि पेगौले यहाँ सुनिगा क्वाज नि च्याकु डिग्री सेल्सियस तथि लुगु खसा थौ यहाँ सुनिगले सुथेसिया यहाँ त इजुया चिन्छगु मिनेटे लुगु सूर्य शनिल नेता इजुया नेगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल भाषा समाचार पुन शुभ

छु रेडियो नेपाल हिना तामाङ सानगिर रे राङ्नी दा ढेनमुला गै दिरा थिङ काइब्लोन बालेन्द्र सहासे नेपाल ला पर्यटन दा लेना लाबारी गे ताबान मुबासे होटेल छोङबोन कादेसे लाबान खासियु बा चिन्ता दारेम थुम्ला बिसी सुङबा मुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला गेजाङरी तिनी होटेल सङ नेपाल हानला धानपो कादे थेन लाबा काठुइरी काइब्लोन साहसे निजी थुम्दा ह्युल दा रो ताबा घे लाबारी सुङबा मुला रिमछिम पर्यटन थेन नागरिक उड्डयन ब्लोन खड्क राज पौडेल से नोन पो किन्बा काठु हानला धान पोकादेसे नेपालला होटेल उद्योग से धिङ गिग्री लाख भ्लिची पर्यटक दा सेवा पिनबारी खामला बिसी सुङबा मुबा काठुइरी हानला गेतेन बा चोहो दिनेश तुलाधर लोन्छेन साजन साक्य नोर चोहो युवराज श्रेष्ठ गे समिति सदस्य कादेसे नोन लेङमो थान्स्युबा मुबा प्रतिनिधि सभाला सांसद कादेसे ह्युल्डी लिछाला धुरी मराङबा समस्या कादे थुम्ना लाबारी सरकारला ध्यान छेङना लास्यु बामुला सभाला तिनीला चिसाङरी सांसद कादेसे सुकुम बासीला व्यवस्था पण्डी च्याबा गोबान आलाना बस्ती ग्याम थोन्बा समस्याला ताम थान्छिबान थेनी कादेला चिबा ग्ला होल्डिङ सेन्टर री चाबा थुङबा स्यार लुइला समस्या योनान थुम्ना लाबारी सरकार दा सुङबा मुला सांसद कादेसे अस्थायी करार थेन ज्यालादारी कर्मचारी राङला गेला सुरक्षा रिबान सिंह दरबारी आन्दोलन लाबान खाबा मुला बिबान तोङ गाँचुई विमान लाना कर्मचारी दा बेरोजगार शोभा गे आलाना समस्या थुम्ना लाबारी सुङबा मुला वीर अस्पताल गंगालाल अस्पताल थेन टिचिङ अस्पताल कादेरी ठिम्दा नाङसी मान ग्लुमा समस्या मराङबा मुलासुङबान सांसद कादेसे सेटिङ री लाबा लुट्दा काबारी मानला टेन्डर प्रक्रिया सुधार लाबारी सुङबा मुला प्रतिपक्षी दल्ला सांसद कादेसे तिनी नोन प्रतिनिधि सभारी काइब्लोन बालेन्द्र साहसे सांसद री पाङबा मुर्ला ताम सच्याई दिदोला विमान विरोध लाबा मुबा थिम न्याय थेन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतमसे ग्यार्जा गिक्से डुचुई डु विनय विधेयक दा प्राथमिकतारी थान्ची सरकारसे संसदरी धर्ता लाबा थिम कादेला मस्यौदाला सूची थेन गे तालिका संघीय संसदरी पुइसी झिन्बा मुला बिसी सुङबा मुला प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङरी दुई ऋषि थिम ब्लोन गौतमसे नोर्दिङ 2083-84 लागि संघीय संसदरी थान्बा गोर कुचुई छार थेन डुचुई कु संशोधन लाबा विधेयकला संख्या शोभा मुला बिसी सुङबा मुबा राष्ट्रिय सभाला सांसद कादेसे ह्युलबाङ ह्युल्ला बाङ रि तिलाई संचार दिम थेन नेपाली काङ्ग्रेसला चोहो गगन थापाला धिम्ला मनाप्री मोटर थान्बा कादे थोरी च्याबा साइबा लासी कोङबा कारबाही लातोला विमान सरकारला ध्यान छेङना लासिबा मुला राष्ट्रिय सभाला तिनी लाची साङ्री नेपाली काङ्ग्रेसला सांसद कमला पन्त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीला सांसद झक्कु प्रसाद सुवेदी नेकपा एमालेला सांसद रोशनी मेचेथेन जनता समाजवादी पार्टीला सांसद महन्त ठाकुर थेन स्यान्दो सांसद कादेसेनोन लेङमो थान्सिबा मुबा राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङरी चोहो नारायण प्रसाद धालसे युलु चोहोला गिजाङ ग्याम खाबा विधेयक प्रमाणीकरणला चिठी डोसी थाइना लास्युबा मुबा चुराङ लासिन काइब्लोन बाले

चेसुङ बमुला प्रतिनिधि सभाला नोर समितिला तिनी चिबा चिसाङ्री सांसद कादेशे आइपिओ तेबा ताम्री पारदर्शिता सुनिश्चित लाबारी अनियमितता दा थुम्ना लातोला विशेष सुङबामुबा नेपाल धितो पत्र बोर्डला नोर्दिङ 2082-83 ताबा ग्रेनग्रेन घेला ताम्री ताबा काठुरी सांसद कादेशे धितो पत्र भजारदा नोर ठिमथेन थुइबान गाछा बोर्दोला विशी सुङबामुला प्रतिनिधि सभा ला उद्योग छोङथेन श्रम थेन उपभोक्ता हित समिति से एलपी ग्यास्री ताबा म्लाङ बजारी थुम्ना लाबारी उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोनखाङ दा पाङ बामुला सिंहदरबारी तिनी चिबा चिसाङ्री चोहो रह बर अन्सारी से ग्यास व्यवस्थापन लाबारी पाइप थान्बा सम्भावना थेन प्रभाव छ्याम च्याबा गोबा लासी निश्रा ढाङ्री समिति रि विवरण पिनबारी सुङबामुला प्रतिनिधि सभाला रोसुङबोन रुबी कुमारीला गोबाङ्री मेन्दोङा सदस्य मुल्मी थेत्मा जनवादी गणतन्त्र चिनला न्याङ गिची चारी ताबा गाछा चिन सिजाङ सीमापार मोख्युल सहकार्य मन्त्री पो किनबारी तिनी होजावाना निस्युबामुला संघीय संसद लोनखाङला सुङबोन एकराम गिरिसे सुङबा अनुसार रेङेन धोना ताबा होजा घेखोरी रोसुङबोनसे लेङमो थान्स्युबा घेखोरमुला शहीद दशचन्द लुई विज्ञान विश्वविद्यालय री रो कुलपति थिएन रजिस्ट्रार नियुक्ति लाबामुला विश्वविद्यालय सभासे प्राध्यापक डाक्टर सुनिल कुमार जोशीदा रो कुलपति री थिएन डाक्टर भीम बहादुर चन्द रजिस्ट्रार री नियुक्ति लाबाहिला चुङाछा सिफारिस समितिला थुतबोन प्राध्यापक डाक्टर जय राज अवस्थी से रो कुलपति स्यार थिएन क्लाङ ब्लोन सस्मित पोखरेल हुना ग्याम योग्यता च्यासी प्रतिवेदन विश्वविद्यालय सवारी थान्स्यु बामुबा बागमती गान्धीसे थामा टौदह स्यारला तिलाई धिमकाडे जोखिम रे पर्दी बामुला बागमतीसे निदिङ हेन्चे ग्याम पोसी नुप क्यार निबा लिछा टौदहला स्यारथेन लो क्यारला नामसारी जोखिम ले बाहिनला टौदहला मिनी कादेशे पाङबा अनुसार बागमतीला क्याचा ब्ले ललितपुर महानगरपालिकासे गाल लगाइदिबा लिछा बागमतीसे नुप किनारी जेखेन थाबन निबा मुलाबिसी पाङबा मुला म्यागदिला अन्नपूर्ण गाउँपालिका ब्ली नार्च्याङ री मुबा डु मेगाहर्डला रेले खोला जलविद्युत आयोजना भालसे लामा बन्द ताबा मुला आयोजनाला भाँद्री भाल वाङबा लिछा ओने हेन्से विद्युत बन्द ताबा मुला बिसी आयोजना से पाङबा मुला आयोजनाला ग्रेन दार्शनिक काफ्लेला अनुसार बाँध धोना धोबा सडक घ्यालम्नुन ढुइसे अवरुद्ध शोभा मुला नेपाल पर्यटन बोर्डला सञ्चालक समिति रि खुल्ला प्रतिस्पर्धा ज्ञाम तिलमा मेन्दोङा सदस्य नियुक्ति ताबा मुला नियुक्ति ताबा सदस्य कादेरी खुम बहादुर सुवेदी सन्तोष पोखरेल श्री जना केसी पेम्बा शेर्पाथेन डाक्टर शोभिता श्रेष्ठ ढकाल मुला पर्यटन एन थेन धातेला ठिम अनुसार शोभा बोर्ड सदस्य दाम्बा समिति से खुल्ला आवेदन ज्ञाम खावा निवेदन दा च्यासी थेनी कादेदा नियुक्ति लाभा हिला बोर्ड सदस्य री ह्युल नाङ ज्ञाम ग्यार्जा चुइगिक निवेदन खाबा मुबा हेटोडा उपमहानगरपालिका से दाखाबा साउन घिक्ला कुनु हेन्से गान्धी ग्याम युङबा बालुवा चुङबा ग्लुबारी आपिनबा ताबा मुला उपमहानगरपालिका से सूचना तेबान दिङे दाङसे नोर दिङला अनुसार नाङरी असार नाङरी राङसे लाबा गे कादे पालिकारी पिन्दोबा ठिम मुला बिसी पाङबा मुला सोलु खुम्बुला लिपु पिके गाउँपालिकारी कङ्ग्युर निमा पल्युङ दोङ छोङलिङ गुम्बा सोबारी युङथान लाबामुला गाउँपालिकाला चोहो मिना बस्ने तेन याम्बुरी मुबा भारतीय ग्लेबोन खाङला लोन अजय कुमार सिंह से तिनी गुम्बाला युङथान लास्युबा हिनला बिसी ग्लेबोन खाङसे पाङबामुला भारत सरकारला करोड सोमसे लाख सोमचुई टाङ्गाला रोरी होजा गुम्बो सोबारी माइबा हिनला
सर्लाहिला मुर थुम बलरा नगरपालिका गिक हथ्यौ लियारी करेन्चे चुङसी मेन्दो गिक सानम भोन सी बामुला हथयवाला सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ला अधिया बुरी कमाई दिवान खाबा भारत ला सीतामढी श्रीनगर बिहार चिबा घाँचुई दिङला अरविन्द्र कुमार

किङ द करेन से चुङसी सिबा हिनला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला फ्रान्स दा ब्राना लाबाने स्पेन फिफा विश्वकप 2026 ला फाइनल दि धोबा मुला अमेरिकाला टेक्सास ला डालास स्टेडियम दि ताबा गिक्चा सेमी फाइनल दि स्पेन से फ्रान्स दा गोल निसे ब्रेना लाबान फाइनल दि धोबा हिनला चुराङलासिन निसा सेमी फाइनल तिनी मुनला चुइनी ह्यासी ब्लिचुइङा मिनेट्री अर्जेन्टिना थिएन इङ्ल्यान्ड क्लाङसे दामुला तिनी डाबा टिमसे फाइनल स्पेन देन क्लाङदोसे दामुला स्यान्सिबान मुबा सानगुर जिन्जी फ्याफुल्ला।

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमा समाचार सुनल जाय। प्रतिनिधि सभाके सांसद लोकनि देशमे पछिला समय देखल गेल समस्या, आत्मदाहक घटना, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, किसानक समस्या समाधान सहितक विषयमे सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। सभाक आजुक बैठकमे सांसद लोकनि सुकुम्बासीक उचित व्यवस्थापन बिना बस्तीसँ हटबैत काल उत्पन्न परिस्थिति सम्बन्धमे जानकारी करबैत ओकर सभक वास स्थान होल्डिंग सेन्टरमे रहल, भोजन, जल, शिक्षा, स्वास्थ्यक समस्या तत्काल समाधान करबाक लेल सरकारसँ मांग कयलनि। बैठकमे प्रतिपक्षी दलक सांसद लोकनि सरकार सस्ता लोकप्रियता आ प्रचारमुखी गतिविधि केन्द्रित बनल आरोप लगबैत एहन गतिविधिसँ देश नहि बनबाक आ दुर्घटना दिस जयबाक कहैत समयमे सुधार करबाक लेल आ सभके विश्वासमे लऽ कऽ देशके समृद्धिक मार्गमे आगू बढ़बाक बात बतौलनि। सांसद लोकनि अविरल वर्षासँ देशभरि बाढ़, भूस्खलन, डुबानक समस्या बढ़ल विषयमे सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत विपदमे पड़ल नागरिक सभके उद्धार आ राहतके लेल प्रभावकारी व्यवस्थापन करबाक मांग कयलनि। सांसद लोकनि मेची राजमार्ग सहितक सड़क खंड सभमे जोखिमयुक्त बनल तथा इलामक बहुतो बस्तीसँ विपदके जोखिममे रहल कहैत समयमे जोखिमके न्यूनीकरण आम नागरिकक जीवन रक्षाक लेल काज करबाक लेल सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद लोकनि अस्थायी करार आ जलाधारी कर्मचारी रोजगारी सुरक्षा मांग करैत सिंह दरबारमे आंदोलनरत रहल लगभग 50,000 सँ अधिक कर्मचारीके बेरोजगार बनेबाक काज नहि करबाक लेल आ समस्या समाधान करबाक मांग कयलनि। वीर अस्पताल, गंगालाल अस्पताल, टीचिंग अस्पतालमे मेडिकल माफियाक कारण औषधि खरीदमे समस्या उत्पन्न भऽ रहल कहैत सांसद लोकनि सेटिंगके आधार पर बढ़ रहल लूटतंत्र रोकबाक लेल औषधिक टेंडर प्रक्रिया सुधार करबाक मांग कयलनि। सांसद लोकनि पछिला समयमे मानसिक समस्या सहितक कारण देशमे आत्महत्या, आत्मदाह सन घटना बढ़ल कहैत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नीतिमे परिमार्जन आ नया नीति अनबाक लेल आवश्यक रहल बतबैत एक सशक्त मानसिक स्वास्थ्य परिषद गठन करबाक मांग सेहो कयलनि। एहि बीच प्रतिपक्षी दलक सांसद लोकनि आइ सेहो प्रतिनिधि सभामे प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह संसदमे देल गेल सीमा सम्बन्धी हित विपरीत के अभिव्यक्ति सुधार करबाक मांग करैत विरोध कयलनि। बैठक में प्रतिपक्षी दलक सांसद लोकनि प्रधानमंत्री शाह नेपालक आ नेपाल भारतक सीमा नेपाल द्वारा हड़पल गेल कहिकऽ देल गेल गलत अभिव्यक्ति आ प्रतिपक्षी द्वारा उठाओल गेल प्रश्नक उत्तर नहि देबा धरि संसद में विपक्षीक विरोध कायम रहबाक बात बतौलनि। ओ लोकनि प्रधानमंत्री के सदन में उपस्थित भऽ कऽ देश में उत्पन्न परिस्थिति आ संसद सब द्वारा उठाओल प्रश्नक उत्तर देबाक लेल रूलिंग करबाक हेतु सभामुख सँ आग्रह कयलनि। राष्ट्रीय सभाक दोसर बैठक अगिला सौन 15 गते बैसवला भेल अछि। सभाक आजुक बैठक में अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ई जानकारी देलनि। तकर बाद बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाहक दिसक कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयक आव 2081-82 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयलनि। बैठक में अध्यक्ष दहाल राष्ट्रपति कार्यालय सँ प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी पत्रक ब्यौरा जानकारी करौने छलथि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह देशक पर्यटन प्रवर्धन के हेतु द्रुत गति में काज भऽ रहलाक कारणे होटल व्यवसायी सबके चिंता नहि करबाक लेल आग्रह कयलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय में आई होटल संघ नेपाल हानक पदाधिकारी सब संग भेल छलफल में प्रधानमंत्री शाह निजी क्षेत्र के सरकार उच्च प्राथमिकता देलाक कारणे राज्य के अपन मजबूत साझेदार मानिक काज करबाक अनुरोध कयलनि। प्रधानमंत्री शाह व्यवसायी सबके कानून के पालना करैत अपन व्यवसाय के जिम्मेवारी पूरा करबाक लेल छोट तथा मझौला होटल सबके पर्यटन विभाग में दर्ता का करक दायरा में अनबाक लेल आ सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP ढांचा में कैल जा सकबाक सहकार संबंध में अध्ययन करबाक लेल आग्रह कयलनि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौड़ेल सेहो सहभागी भेल एहि छलफल कार्यक्रम में। हानक पदाधिकारी सब देशक होटल उद्योग वार्षिक 40 लाख पर्यटक के सेवा देबा में सक्षम रहल जानकारी करौलनि। हाल वार्षिक 12 लाख मात्र पर्यटक भीतर आबि रहल जानकारी देत व्यवसायी सब पर्यटक आगमन बढ़ला पर आंतरिक रोजगारी में वृद्धि करबाक, नेपाली युवा के वैदेशिक रोजगारी में जाय सँ रोकबाक लेल होटल उद्योग एक मजबूत माध्यम बनबाक बात बतौलनि।
देश के आरोग्य पर्यटन, विवाह गंतव्य, सीमा पार पर्यटन के रूप में विकास करबाक लेल प्रचुर संभावना रहल कहित ओ लोकन सरकार समक्ष किछु नीतिगत मांग सब प्रस्तुत कयलन। ओ लोकन होटल उद्योग के अन्य उत्पादन मूलक उद्योग सरह विद्युत महसूल में सहूलियत देबाक लेल छोट तथा मझौला होटल के लेल 25 सैया धरिक संक्षिप्त वातावरण मूल्यांकन अध्ययन अव्यवहारिक भेलाक कारण एहि के 50 सैया धरि कायम करबाक मांग कयलन। मध्य प्रदेश सरकारक अगला आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट सहितक आर्थिक विनियोजन विधेयक 2083 प्रदेश सभा सँ आई सर्वसम्मति सँ पारित भेल अछि। मध्य प्रदेश सभाक आजुक बैसल बैठक में प्रदेश सरकारक अर्थमंत्री युवराज भट्टराई द्वारा पेश कयल मध्य प्रदेशक आर्थिक विनियोजन विधेयक 2083 पारित कयल जाकर प्रस्ताव सर्वसम्मति सँ पारित भेल। सभामुख राम आशीष यादव घोषणा कयलनि। दू दिन धरि चलल प्रदेश सभा बैठक में 21 प्रदेश सभा सदस्यगण विनियोजित विधेयक अंतर्गत विषयगत मंत्रालय के शीर्षक ऊपर उठाओल प्रश्न सभा को मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव अर्थमंत्री भट्टराई जवाब दिलाक बाद आर्थिक विनियोजन विधेयक 2083 सभामुख यादव निर्णयार्थ प्रस्तुत कयने छलथि। बैठक में उपस्थित सब प्रदेश सभा सदस्यगण आर्थिक विनियोजन विधेयक 2083 के समर्थन कयलाक बाद विधेयक सर्वसम्मति सँ पारित भेल। सभामुख यादव घोषणा कयलनि प्रदेश सरकारक आर्थिक विनियोजन विधेयक 2083 पारित भेल एम्हर मध्य प्रदेश सभाक बैठक दोसर सूचना जारी नहि करबा धरिक लेल स्थगित भेल। सभामुख यादव घोषणा कयलनि। मध्य प्रदेश सभा में प्रदेश सरकारक प्रदेश विनियोजन विधेयक 2083 ऊपर छलफल के क्रम में प्रदेश सभा सदस्यगण उठाओल प्रश्नक उत्तर देत मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव पछला समय नागरिक में मानसिक समस्या बढ़त काल आत्महत्या आत्मदाह सन घटना होत गला कारण प्रत्येक अस्पताल में मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सा सभक व्यवस्था करय लागल बतौलन। शरीर में पेट्रोलियम पदार्थ खनियाक आत्मदाह कैल सरलाहिक विवेक मंडल के परिवार के राहत उपलब्ध करेबाक घोषणा करते मुख्यमंत्री यादव मंगल दिनक रात आत्मदाहक प्रयास कैल रोहतक गरुड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के 28 वर्षीय गौतम कुमार सहनी के स्वास्थ्य लाभक कामना सेहो कयलनि। एहिना मुख्यमंत्री यादव मध्य प्रदेश में अखन लगभग 10,000 मैट्रिक टन चाउर भारत से आयात कैल जेबाक अवस्था के अंत क प्रदेश के धान आ चाउर पर आत्मनिर्भर बनेबाक लेल प्रयत्नशील रहल बतौलन। ओ सप्तरी आ सिराहा में आम खेती सरलाही में टमाटर खेती तथा रोहतक आ बारा में केरा खेती के प्रोत्साहन करवा सन प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के विशेष प्राथमिकता देल उल्लेख कयलनि। सरकार बर्ड फ्लू के कारण मुर्गा मरलाक बाद पीड़ित किसान के 50,71,00,000 टका राहत उपलब्ध करौलक अछि। पशु सेवा विभागक वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर मुकुल उपाध्याय अनुसार एखन धरि झापा मोरंग सुनसरी चितवन काठमांडू भक्तपुर ललितपुर आ कांवरे प्लांचौकक 105 गोटे किसान के ई राहत उपलब्ध कराओल गेल अछि। बर्ड फ्लू नियंत्रणक लेल पशु विभाग माथत मे नष्ट कयल गेल मुर्गा सबके क्षति स्वरूप किसान प्रक्रिया पूरा कर कागजात बुझौला पर क्षति के 75% राहत प्रदान कैल बतौलन। विभागक तथ्यांक अनुसार संक्रमण नियंत्रणक लेल पिछला 3 मास देश भर लगभग 7,54,500 पक्षी 10,91,303 अंडा तथा 2,43,635 किलो दाना नष्ट कयल गेल अछि। डॉक्टर उपाध्याय के अनुसार 3 मास एम्हर बर्ड फ्लू फैलल 11 जिला मध्य झापा मोरंग सुनसरी महतरी बारा चितवन सहित जिला में पूर्ण रूप में नियंत्रण में आयल अछि। काठमांडू पथकाक 3 जिला आ काभरे प्लांचुक में बर्ड फ्लू नियंत्रण उन्मुख रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कांग्रेस नेतृत्वक सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सँ समर्थन फिर ताले लगै छै। धनगढ़ी में आई बैसल एमाले प्रदेश संसदीय दलक बैठक सरकार के दिल गेल समर्थन फिर लेबाक निर्णय कयल संसदीय दलक नेता राजेंद्र सिंह रावल जानकारी दिलन। ओ अगला आर्थिक वर्षक लेल आनल गेल बजट में पार्टी का सहमति रहल आ समाधानक लेल छलफल भ रहल समय अपन पार्टी सँ प्रतिनिधित्व करबाक आ करय वाला मंत्री सबके पदमुक्त कलाक बाद समर्थन फिरता लेबय पड़ल बतौलन। नेता रावल पार्टी भीतर छलफल तथा नेता सब संग आवश्यक परामर्श पश्चात अगला योजना निर्माण कयल जेबाक आ प्रदेश सरकार तथा बजट संबंध में धारणा सार्वजनिक कयल जेबाक जानकारी दलन। मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह आइए एमाले सँ सरकार में प्रतिनिधित्व करयवला भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सुरेंद्र बहादुर पाल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री वीर बहादुर थापा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री हीरा सार्की आ भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री निर्मला साउद के पदमुक्त कयने छलथि।
काठमांडू पत्रिका में वर्षों से सड़क के खंभा में उधरायल आ सड़क के किनार में ओहिना रहल प्रयोग विहीन इंटरनेट टेलीफोन टेलीविजन के तार सब व्यवस्थापन करबाक लेल सरकार समय सीमा सहितक कार्ययोजना बनाकर आगू बढ़बाक लेल संबंधित निकाय के निर्देशन देलक अछि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा आ ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठक उपस्थिति में आई ऊर्जा मंत्रालय में बैसल उच्च स्तरीय अंतर निकाय बैठक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल टेलीकॉम एनसेल तथा इंटरनेट सेवा प्रदायक सभक छात्र संगठन आईएसपन के एकीकृत कार्ययोजना बनाकर सौन दोसर सप्ताह भीतर पहल चरण में उपत्यक 6 स्थान के प्रयोग विहीन तार हटेबाक लेल निर्देशन

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष को कानून निर्माण और सुधार वर्ष किया गया घोषित। 166 विधेयकों की सूची संघीय संसद को भेजी जा चुकी है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने होटल व्यवसायियों से की चर्चा। सरकार निजी क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे रही है, प्रधानमंत्री का कथन। करनाली प्रदेश में नेपाली कांग्रेस की ओर से शामिल 4 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। वहीं सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार से नेकपा एमाले ने अपना समर्थन लिया वापस। आज रात से परसों तक देश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना और यदि अमेरिका अपने हमले जारी रखता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य सहित प्रमुख व्यापारिक मार्गों को बंद कर देगा, ईरान ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि संसद की जीवंतता इस बात से तय होती है कि सांसद जनता के कितने निकट है। प्रतिनिधि सभा की बैठक को संबोधित करते हुए सभामुख अर्याल ने कहा कि सांसद जनता और संसद के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही की लोकतांत्रिक कड़ी है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज और अपेक्षाओं को संसद की निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचाना तथा उन्हें जनता के बीच स्थापित करना ही जनप्रतिनिधियों का मूल दायित्व तो है। उन्होंने कहा कि संघ प्रदेश और स्थानीय तह के बीच सहयोग, सह अस्तित्व और समन्वय पर आधारित संबंधों को आत्मसात करते हुए कानून निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण को और प्रभावी बनाना चाहिए। साथ ही तीनों तहों की जटिलताओं और अपेक्षाओं को संघीय स्तर तक पहुंचाने में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए। सभामुख कार्याल ने कहा कि चालू आर्थिक वर्ष में लागू की गई सरकारी नीतियों, संचालित कार्यक्रमों, बनाए गए कानून और दी जा रही सेवाओं पर जनता की प्रतिक्रिया सुनना और समझना भी प्रतिनिधि सभा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नवगठित प्रतिनिधि सभा के सत्र में सांसदों की भूमिका सक्रिय रही है और आगामी बैठकों में भी उनसे और अधिक सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने जानकारी दी कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर संसद में पंजीकरण के लिए 166 विधेयकों के मसौदों की सूची और कार्यतालिका संघीय संसद को भेज चुकी हैं। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में समय लेकर मंत्री गौतम ने बताया कि आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए संघीय संसद में 97 नए विधेयक और 69 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संघीय संसद में विधेयकों के निर्माण, चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा पूर्वानुमेय बनाने और विधायी कार्यवाही को नियमित, सुचारू एवं समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सभामुख संसदीय समितियों के सभापतियों तथा संघीय संसद सचिवालय से आवश्यक समन्वय करने का आग्रह किया गया है। इसी तरह प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने अर्थ संबंधी कुछ नेपाल कानून को संशोधन और खारिज करने का विधेयक 2083 सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। प्रतिनिधि सभा ने आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित 2 प्रोटोकॉलों को मंजूरी दे दी है। सदन ने युवा श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव द्वारा प्रस्तुत 1930 के बाध्यकारी श्रम सम्मेलन से संबंधित 2014 के प्रोटोकॉल संख्या 29 तथा 1947 के श्रम निरीक्षण सम्मेलन संख्या 81 का अनुमोदन किया। चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री यादव ने कहा कि ये प्रोटोकॉल जबरन श्रम की रोकथाम, पीड़ितों की सुरक्षा, न्याय तक पहुँच और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए सदस्य देशों की जिम्मेदारियों को और स्पष्ट बनाते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल का संविधान दासता, जबरन श्रम, मानव तस्करी और सभी प्रकार के शोषण पर रोक लगाता है, लेकिन कानून से अधिक चुनौती उसका प्रभावी क्रियान्वयन है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित 3 आयोगों का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया। बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आगामी श्रावण 14 गते गुरुवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक श्रावण 15 गते शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह ने कहा है कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है और होटल व्यवसायियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में आज होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल हान के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे रही है और उसे राज्य का मजबूत साझेदार बनाकर काम करना चाहती है। प्रधानमंत्री शाह ने होटल व्यवसायियों से कानून का पालन करने, छोटे और मध्यम होटल पर्यटन विभाग में पंजीकृत कराने, उन्हें कर के दायरे में लाने तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सहयोग की संभावनाओं का अध्ययन करने का आग्रह किया। बैठक में संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल भी मौजूद थे। इस दौरान हान के पदाधिकारियों ने बताया कि नेपाल का होटल उद्योग प्रतिवर्ष 40 लाख पर्यटकों को सेवा देने में सक्षम है और सरकार के समक्ष कुछ नीतिगत मांगे भी रखी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। मध्येश प्रदेश सभा ने प्रदेश सरकार द्वारा पेश आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट सर्वसम्मति से आज पारित किया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ने कांग्रेस नेतृत्व वाली सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। धनगढ़ी में आज हुई पार्टी के प्रदेश संसदीय दल की बैठक के बाद नेता राजेंद्र सिंह रावल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष के बजट को लेकर पार्टी की असहमति थी। इस मुद्दे पर बातचीत जारी रहने के दौरान उनकी पार्टी के मंत्रियों को पद से हटा दिया गया, जिसके बाद समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया गया है। नेपाली कांग्रेस ने कर्णाली प्रदेश सरकार में शामिल चार मंत्रियों ने आज इस्तीफा दे दिया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने आज रात से शुक्रवार तक देश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। महाशाखा के अनुसार मानसून की निम्न दबाव रेखा की वर्तमान स्थिति के कारण कोशी, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई क्षेत्रों के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को पूरे देश में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हिमालय क्षेत्रों में गर्जन चमक के साथ मध्यम वर्षा और हिमपात, जबकि पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका अपने सैन्य हमले जारी रखता है तो वो हॉर्मुज, जल डमरू, मध्य सहित प्रमुख व्यापारिक मार्गों को बंद कर देगा। ईरान के शीर्ष सैन्य मुख्यालय खातम अल अंबिया ने कहा है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा बढ़ने की स्थिति में ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। ईरान का कहना है कि उसकी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए होगी। हॉर्मुज, जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके बंद होने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसी बीच अमेरिका ने कहा है कि उसके सैन्य अभियान जारी रहेंगे और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी आर्थिक वर्ष को कानून निर्माण और सुधार वर्ष किया गया घोषित 166 विधेयकों की सूची संघीय संसद को भेजी जा चुकी है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह ने होटल व्यवसायियों से की चर्चा। सरकार निजी क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे रही है, प्रधानमंत्री का कथन। कर्णाली प्रदेश में नेपाली कांग्रेस की ओर से शामिल चार मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। वहीं सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार से नेकपा एमाले ने अपना समर्थन लिया वापस। आज रात से परसों तक देश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की है संभावना, और यदि अमेरिका अपने हमले जारी रखता है तो वो हॉर्मुज, जलडमरू मध्य सहित प्रमुख व्यापारिक मार्गों को बंद कर देगा, ईरान ने दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।